पुरा जग तारण को अवतार बनायो, जपेओ जिन अर्जुन देव गुरु, फिर संकट जोन गर्बना आयो। ऐसे दीन दयाल सतगुरु

के ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा साहेब जी नो पहले ग्रंथी थाप के तिना दे शीश ते सुभायमान करके आ

0: सूतक क्यों कर रखी है सूतक पवै रसोई, नानक सूत के बना उतरे ज्ञान उतारे तोहे महला पहला।
1: मन का सूतक लोभ है जेवा सूतक कूड़, अखी सूतक वेखना पर त्रै पर तन रूप, कन्नी सूतक कन पहला इतबारी खाए, नानक हंसा आदमी पदे जम पुर जाए, महला पहला सबो सूतक पर मैं दूजे लगे।

0: नानक फिकै बोलिया तमन फिका होए फिको फिका सदिया फिके फिकी सोए फिका दरगह सटिया मोथु का फिके पाए फिका मूर्ख आखी है पाणा ले सजाहे मला पहला
1: अंदरों झूठे पैज बाहर दुनिया अंदर फैला सर तीरथ जिन नावे उतरे नाही मैल जिन पट अंदर बाहर गुदरते भले संसार तिन्ने हो लगा रब सिद्धि दे।

बड़ी चाकर लगे चाकरी जे चले कसम पाए और मत स्नोक लियो बचो बेदुड़ा खाए कसम करे बराबरी फिर गैर संदर पाए तो मैं मफाड़ा।

श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज आप जी दे हजूर शब्द चौंकी आसां दी।

0: Igual, igual, igual.
1: एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपाओ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैपं गुर प्रसाद चक्र चिहन अर वरन जात अर पात नहिन जेह रूप रंग अर रेख पेख को कह ना सकत केह अचल मूरत अनपाओ प्रकाश अमित तोज कहिजा

सर्व नाम कथा कवन कर्म नाम वर्णत सुमत रहे संत हटोन साध बहुतेरे डिठे सन्यासी तपसी मुख हो ए पंडित मिठे बरस एक हो फिर किने नह पर चौ लाओ कहते है कहती सुनी रहत को खुशी न आयो हर नाम छोड़ दूजा लगे तिनके गुण हो क्या कहो गुर दइए मिलायो पिखिया जेव तू रखा है तेव रहा।

जन मानस ते देवते किए करत ना लागी वार। जे सौ चंदा उगवा सूरज चढ़ा हजार, इत चानण होंदियां गुर बिन घोर अंधार। तुर की बाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई, दयाल पुरख मेहरवाना हर नानक साच वखाना। मान

आया गए मसकत घाल, नानक देव के जले केती छुट्टी ना। जिनी नाम ते आया गए मसकत घाल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी ना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

गए मशक्कत काल नानक ते मुख केती छुटी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।

अब्रख दास पाठ की लाज। जैसी राखी लाज भगत प्रहलाद की, हर नाख सफारी कर आज। फुन द्रौपदी लाज रखी हर प्रभ जी, छीनत वस्त्र दीन बहु साज। सो दम अपदा ते राखिया, गन का पढ़त पूरे तेह काज। श्री सतगुर सुप्रसन्न कल युग होए, रखो दास पाठ की लाज। संता के कार्य आप खलोया, हर कम करावण आया राम। धरत सुहावी ताल सुहावा, विच अमृत जल छाया राम। रत्न रत्न पदार्थ बहु सागर भरिया राम। बाणी गुरबाणी लागे, तिन हथ चढ़िया राम। गुरबाणी लागे तिन हथ चढ़िया, निर्मोलक रत्न अपारा। हर हर नाम अतोलक पाया, तेरी भगत भरे भंडारा। समुंद विरोल शरीर हम देखिया, एक वस्त अनूप दिखाई। गुरु गोविंद गोविंद गुरु है, नानक भेद न पाई। समुंद विरोल शरीर हम देखिया, एक वस्त अनूप दिखाई। गुरु गोविंद गोविंद गुरु है, नानक भेद न पाई। सुख टल गुर सेविया, अहनिस सहज सुपाई। दर्शन परसया गुरु का, जन्म मरण दुख जाए। होवे सिफत खसामंदी, नूर अरसों कुरसों चट्टी है। तुद डिठे सच्चे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कटी है। सज्जन सच्चा पातशाह, सिर शाह जिस पास बैठिया सोही है। सबना दावे साहो, सज्जन सच्चा पातशाह, सिर शाहो जिस पास बैठिया।

माता तर्त महत दिवस रात दोए दाए दाया खेले सगल जगत चंगे आईया बुरे आईया वाचे धर्म हदूर करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर जिनी नाम ते आया गए वसत तत्हाल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी ना जिनी नाम ते आया गए वसत

काचा तन संच मूर्ख गावार। मनमुख भूले अंध गवार। दिखिया कै धन सदा दुख होए। ना साथ जाय ना प्राप्त होए। साचा धन गुरमति पाए। काचा धन फुन आवै जाए। रहौ मनमुख भूले सब मरहै गवार। भव जल डूबे ना उर वार ना पार। सतगुर भेटे पूरा भाग। साच रते अहनस बैराग। चाह जुग में अमृत साची बाणी। पूरा भाग हर नाम समाणी। सिद्ध साधक तरसै सब लोए। पूरा भाग प्राप्त होए। सब की

माता तरत महत दिवस रात दाई दाई दाया खेले सगल जगत चंगियां या बुरियां

सर्व सुख होवे जहां जहां खालसा जी साहेब तहां तहां रचिया रियायत देग तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय खालस जी के बोल बल।

श्लोक पवन गुरु पाणी पिता माता सरसुमहत दिवसरात दोए दाई दाया खेल सगल जगत चंगे आईया बुरे आईया वाचे धर्म दूर करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर

0: सच्चे तेरे खंड सच्चे ब्रह्मांड सच्चे तेरे लो सच्चे आकार सच्चे तेरे करने सर्व विचार सच्चा तेरा अमर सच्चा दीबान सच्चा तेरा हुक्म सच्चा फरमान सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान सच्चे तुद आखे लाख करोड़ सच्चा सब तान सच्चा सब जोर सच्ची तेरी सब सच्ची सलाह सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह नानक सच त्या इन सच जो मर जमे सो कचन कच महला पहला
1: वड़ी वड़ाई जा वड़ा नाओ वड़ी वड़ाई जा सच ने आओ वड़ी वड़ाई जा निचल थाओ वड़ी वड़ाई जाने अलाओ वड़ी वड़ाई बुझे सब पाओ।

विस्माद नाद विस्माद वेद विस्माद जीव विस्माद भेद विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नागे फिर जन विस्माद पौन विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेड विडानी विस्माद धरती विस्माद खानी विस्माद साध लगे प्राणी विस्माद संजोग विस्माद विजोग विस्माद भुख विस्माद भोग विस्माद सिफत विस्माद साला विस्माद उजड़ विस्माद रहा

बैठा हुआ दुनिदार कल संगल का चलाया। आज्ञा करने कृतवाचे बह लिखा कर समझाया। आउन होवे पाउंदे हुण सुनिए क्या रुआया। मन अंधे जन्म गवाया, मन अंधे जन्म गवाया।

चले नचन गुर पैर हलाइन फेर से उड़ उड़ रवाज हटे पाए वेख लो घस कर जाए रोटियां करण पूरे तार आप छड़े धरती ना।

सचो सच वरताया, जिस तू दे तिस मिले सचता तिन्नी सच कमाया, सतगुर मिले सच पाया जिनके हृदय सच वसाया, मूर्ख सच ना जाननी मन मुखी जन्म गवाया, विच दुनिया काहे आ

0: पढ़ पढ़ गड्डी लदी है पढ़ पढ़ भरी है साथ, पढ़ पढ़ बेड़ी पाई है पढ़ पढ़ गड्डी है खात, पढ़ी है जेते बरस बरस पढ़ी है जेते मास, पढ़ी है जेती यार जा पढ़ी है जेते सास, नानक लिखे एक गल और हम मैं चखना चाख महला पहला।
1: लिख लिख पढ़िया ते ता खड़िया बहुत तीर्थ भव्या, ते तो लव्या बहु फेकिया, देही दुख दिया सहवे जिया अपना किया, अन्ना खाया साद गवाया, बहुत दुख पाया दूजा भा, वस्त्र न पहरे नस्केरे मौन में गुता, क्यों जागे गुर बिन सुता, पग पे ताना अपना किया कमाना, अलमल खाई सिर छाई पाई, मूर्ख अंधे पत गवाई, बिना वे किस थाए ना पाई, रे बाणी मड़ी मसाणी, अंधे ना जाने फिर पछताणी, सतगुर भेटे सो सुख पाए, हर का नाम मन मसाए, नानक नदर करे सो पाए, आस देसे तेने केवल, हमें शब्द जलाए, पौड़ी भगत रे मन भावन दे।

कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार, कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ बैसनहार, कूड़ सोयना कूड़ रूपा कूड़ पैनण।

सब जग चलनहार, कूड़ मिठा कूड़ मख कूड़ डोबे पूर, नानक वखाणे बेनती तुत बाज कूड़ो कूड़ महला पहला।

सोरठे गुरु अर्जुन पुरख प्रमान पार्थो चाले नहीं नेजा नाम निशान सतगुरु शब्द सवार्यो पवजल सहर सेत ना।

0: अपनाए अवर सर काम, बार अंतर पूरी पड़ी।
1: तीन पवन पर पूरे सोई, आपन सर कियो ना जगत कोई, आपने आप ही उपायो, सुर नर असुर अन नहीं पायो, पायो नहीं अन सुरे असुरे नर गन नर खो जंत फिरे, अबनासी अचल अजुने संभो पुर खोतन अपार परे, करण कारण समरत सदा सोई, सर्व जी मन ते आयो, श्री गुर रामदास, जय ओ जय जग में ते हर परम पद पायो, सतगुर नानक भगत करी एक मन, तन मन तन गोबिंदियो, अंगर अनंत मूरत निज तारी, अगम ज्ञान रस रस्यो हियो, गुरु अमरदास करतार कियो वस, वाहो वाहो करते आयो, श्री गुर रामदास, जय ओ जय जग में ते हर परम पद पायो।
2: जब लो नहीं भाग लीलारी उदा, तब लो परम ते फिरते बोतायो, कल कोर सम

0: फिर संकट जो गर्भ न आयो।
1: कलश मंदर पैरूप प्रगट हर नाम उदारण, बसे संत जिस हृदय दुख दरिद्र निवारण। निर्मल पेख पार तास बिन अवर न कोई, मन बच जिन जान्यो पयो ते संसर सोई। तरन गगन नव खंड में ज्योत स्वरूपे रहो पर, पन मथुरा कछ भेद नहीं गुर अर्जन परतख हर। पन मथुरा कछ भेद नहीं गुरु अर्जन परतख हर।
2: श्री गुरु साहेब सब ऊपर करी कृपा सतजुग जिन त्रूपर। श्री प्रहलाद भगत उधरियंग हस्त कमल माथे पर तरियंग, अलख रूप दी लख्या ना जाई, साधिक सिद्ध सगल शरणाई। गुर के बचन सत जी तार हो, मानस जन्म देन स्तार हो। गुर जहाज खेवट गुरु, गुर बिन तरिया ना कोए। गुर प्रसाद प्रभ पाईए, गुर बिन मुक्त ना होए। गुर नानक निकट बसे बनवारी, तिन लेना थाप जोत जगतारी। लेने पंथ धर्म का किया, अमरदास पल्ले को दिया। तिन श्री रामदास सोडी थिर थप्यो, हर का नाम अखैन दप्यो। अप्यो हर नाम अखैन दचो जुग, गुर सेवा कर फल लियं। बंदे है जो चरण शरण सुख पावे है, परमानंद गुरमुख कई।

सब नादा वेसाहो। सत नाम श्री वाहे गुरु साहिब जी जैत सरी महला चौथा कार पहला चौपदे एक ओंकार सत गुर प्रसाद मेरा हीरा रतन नाम हर बसिया गुर हाथ धरयो मेरा माथा जन्म जन्म के किल बिख दुख उतरे गुर नाम दियो रेन लाथा

वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। जैत सरी, महला चौथा, घर पहला, चौपदे एक ओंकार। सतगुर प्रसाद मेरा हीर रतन नाम हर बसया, गुर हाथ धरयो मेरा माथा। जन्म जन्म के किल बिख दुख उतरे, गुर नाम दियो उरेन लाथा।

छड़ दुनिया अंदर जावना मंदा चंगा अपना आपे ही कीता पावना हुकम के मन पावने राहे तेरे अगे जावना चंगा तो जग चालिया इसे खरा डरावना करो गल पछो तावना करो गल पछो।